Essentials. LG ले लिया नया LG Essentials Series. अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी को कंप्लीट रेंज, 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट EMI. नागरिकता पाए पुग्छ, हर एक घर को खुशी, घर घर में LG. LG, life's good.

पार्थिवास एफएम समय सूचन यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले मध्याह्न 12 बजे

पार्थिवास एफएम समय सूचना। यो पार्थिवास एफएम को समय हो, अहिले दिउँसो एक बजे।

0: ओ मेरो फुलवारी, अब के छ त विचार?
1: के विचार? को फुलवारी? मसु बहिनी।
0: बहिनी त साली, तिमी नै त अनि मेरो फुलवारी।

एलजी ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कम्प्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भाई पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी लाइफ गुड